0: 565 राज्य अनुसार का पत्थर का लागी जयलक्ष्मी सुनचादी पसल नहीं समझन हो
1: शांति र विकास को लागी हम आवाज रेडियो चौतारी 91.4 मेगाहर्ट्ज।